मनुष्य जब पृथ्वी पर आता है उसका जन्म होता है तो यहाँ पे आके मोह माया धन दौलत अपना ऐसो आराम देखकर ये भूल जाता है कि एक दिन सब ये माटी में मिल जाना है और हमें सब कुछ छोड़ जाना है।

सबसे बड़ा अहंकार इसी बात का होता है कि ये कोठी मेरी है, ये बंगला मेरा है, ये कार मेरी है, ये सुंदर पत्नी मेरी है, ये सुंदर बच्चे मेरे हैं। लेकिन परम सत्य ये है कि कोठी, बंगला, कार, पत्नी, बच्चे कुछ भी अपने नहीं है, ये सब कुछ नश्वर है, सब

मनुष्य को अगर अपना मानव जीवन सफल करना है, इसको सफल बनाना है, तो सारे गलत काम छोड़ दे, अहंकार को त्याग दो, क्योंकि हमारे साथ हमेशा एक काल है जो कि काल बनकर घूम रहा है, इसलिए कभी भी गलत कार्य ना करें।

कलयुग में मतलब के रिश्ते हर जगह देखे जा रहे हैं। जब तक आपके पास पैसा है, धन है, दौलत है, शोहरत है, तब तक सब आपके मित्र हैं। और जिस दिन

ये जीवन सिर्फ चार दिनों का है, भगवान की तरफ से ये हमें उधार रूप में मिला है, लेकिन इसमें हम कितने अत्याचार करते हैं, लूट पाट चोरी डकैती सब कुछ करते हैं और

मनुष्य को कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य पाप करता है उसका कोई साझीदार नहीं होता है, उसका कोई

भरोसा करें, किस पर भरोसा ना करें, क्योंकि इस संसार में जो आपके साथ बहुत सगा बनने की कोशिश करता है वही आपके साथ

आज इस कलयुग में इंसान भ्रमित हो गया है कि कौन अपना है कौन पराया है, सब एक ही भेष में दिखते हैं। क्योंकि दिखने में तो कोई बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसके मन में क्या छिपा है कोई जान नहीं पाता है।

दुनिया में आज सच्चाई का जमाना नहीं रहा। अगर आप किसी से सच्चाई बोल दोगे तो आपसे नाराज हो जाएगा। जितना जो झूठ बोल रहा है वो उतना ऊपर है, उतना उसको लोग सम्मान दे रहे हैं। क्या

जीवन में कुछ लोग गलत तरीके से धन कमाते हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, उनको मारते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है कि अंत में ये धन मेरे साथ नहीं जाएगा, कफन भी साथ में नहीं जाता है, ये वो भूल जाते हैं।

इंसान अपने कर्मों का फल हमेशा भोगता है। अगर इस जन्म में पाप कर रहा है तो उसे उस जन्म में जरूर भोगना पड़ता है। इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए, हमेशा सत्कर्म करना चाहिए।

इस संसार में कुछ लोग बड़ा ही निर्भीक होकर पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। आज नहीं तो कल हमें सारा हिसाब चुकाना पड़ेगा।

मनुष्य को समय रहते ही अपने जीवन में सुधार कर लेना चाहिए। छल कपट ईर्ष्या द्वेष सबसे दूर हो जाना चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमें ईश्वर की लाठी ना खाना पड़े।

मनुष्य का जब अंतिम समय आता है तो सब कुछ छूट जाता है, सब कोई साथ छोड़ देते हैं, लेकिन साथ में अगर कुछ जाता है तो वो सिर्फ नेकी साथ में जाती है। इसलिए हमें हमेशा नेकी करना चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए।

जीवन में हमें कभी भी दुख से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब दुख आता है तो सुख भी आता है। जीवन में सुख और दुख एक साथ

सुख और दुख एक साथ चलते हैं। जब हमारे पास सुख आता है तो दुख भी आता है, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है। इसलिए हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इस परिवर्तन से हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, उसके सामने डटकर खड़े रहना।

मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा अज्ञान यही है, जब उसके पास सुख आता है तो वो इतना फूला नहीं समाता है कि भगवान को भी भूल जाता है, और जब दुख आता है तो उसे लगता है भगवान ने उससे सब कुछ छीन लिया, और फिर उसे भगवान की याद आने लगती है। इसलिए सुख में कभी भी फूलना नहीं चाहिए और दुख में कभी भी घबराना नहीं चाहिए।

जीवन में हमें कभी भी दुख से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि दुख के सामने जो डट कर खड़े रहते हैं इतिहास में उनका ही नाम दोहराया जाता है, और दुख के सामने जो हार जाते हैं वो इस दुनिया से गुमनाम हो जाते हैं।

मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है तो उसे अपने और पराए का ज्ञान हो जाता है। वो अपनी कसौटी पर खरा उतरता है और भगवान के प्रति उसका अपार स्नेह बढ़ता है, अपार भक्ति बढ़ती है, क्योंकि दुख में केवल भगवान ही सहारा देते हैं और दूसरा कोई नहीं पूछता।

0: तुम प्लीज इस रिश्ते के लिए मना कर दो। मैंने किसी और से वादा किया है। आई एम सॉरी।
1: ठीक है, पर मुझे बस एक शाम दे दो। फिर भी अगर तुम्हारा फैसला ना बदले तो आई प्रॉमिस मैं इस रिश्ते को मना कर दूंगा।
0: वो तुम समझ नहीं रहे हो।
1: प्लीज एक शाम।
0: अच्छा ठीक है, कल शाम 4 बजे, पर सिर्फ 1 घंटे के लिए।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
4: गंगापुर सिटी की धरतल।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
6: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
7: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
8: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: रेडियो DS
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताएं। कोमल
1: मेरा नाम कोमल है, मिर्जापुर
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: से। मैं बताऊँ
0: बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे? बिल्कुल,
1: मोहब्बत ने रुलाया बहुत।
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। इस पर

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: पायल अग्रवाल,
1: पायल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी, दयालनगर।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते
0: मेरे महबूब कयामत रसूल।
1: हैं? बिल्कुल सुना रहे हैं मैम, आपकी फरमाइश का ये गाना रेडियो 20 में खुल के। धन्यवाद।
0: ओके।

0: आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।
1: नाम बताएं।
2: गुलशन गंगापुर सिटी से।
1: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: लगदी मैनू जिन अमरा दी कोई ना।
1: बिल्कुल सुना रहे मैम, आपकी फरमाइश कहता हूँ।

रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। दुनिया वाले जो भी बोले हमसे ना शर्माओ जी। अब फोन को उठाओ जी और डैडी को मिलाओ जी। उनके फ्यूचर सन इन लॉ की बात उनसे करवाओ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89
2: हेलो जी, नाम बताएं सर।
3: नाम मोहम्मद सहवान जी।
2: कहाँ से बात कर रहे हैं
3: जी? यूपी से, फरुखाबाद।
2: बताएं, फरुखाबाद से बोल रहे हैं आप। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
3: सर, मेला पिक्चर का गाना सुना दीजिएगा।
2: कौन सा गाना है?
3: क्या नाम नाम गाना कौन सा होता है यार? मेला का सुना दीजिए। मेला कोई सा भी दे, सुना देना।
2: ठीक है, सुना दे आपको। हेलो

0: सर जी नमस्कार।
1: जी नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
0: मौसिन।
1: मौसिन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: संजय कॉलोनी।
1: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चिट्ठी आई है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पे गाना रेडियो डीएस में कॉल किया।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
2: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
3: ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ, नाम बचत क्या थे।
2: ठंडीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
3: सर गाने के बोल रहे हैं जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना चाहिए।
2: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से, बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कुल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: दिल काट के
2: दिल आप
1: बिल्कुल
2: बताएं।
1: दिल काट के
0: शहनाज
1: दिल काट
2: शहनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: लंगापुर
0: लंगापुर सिटी संजय कॉलोनी।
2: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? सुना
0: दिल काट के
2: रहे मैम आपकी फरमाइश के लिए धन्यवाद।
3: मैं तो हैरान हूं यार, आज के टाइम पर भी इतने बुरे लोग होते हैं। डू दे इवन एग्जिस्ट?

0: क्या हो गया है?
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका?
4: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
3: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
4: सर बढ़िया गजल लाए हैं। गजल कभी कहा ना किसी से,
3: कभी कहा ना किसी से,
4: ये आशा भोसले जी है।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आशा भोसले जी की आवाज में ये गाना रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो,
3: नाम बताएं सर।
2: मोहम्मद शादाब खान।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं शादाब खान जी?
2: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद से।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS पे?
2: गाना सुनना है सर, बहुत अच्छा गाना है, रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:46 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 9.6 रेडियो डीएस गंगा फुल सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पल।
1: जिनसे मिलने में शायद जमाने लगे, जिनसे मिलने में शायद।
0: दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई 89.6 रेडियो डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो
3: जी, नाम बताएं।
2: अंकित ओजर।
3: अंकित जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: सिंगापुर से।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
2: पल पल जीना।
4: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का।
2: हेलो,
3: नाम बताएं सर।
2: देवेंद्र।
3: देवेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: वो बड़ी फटाका है रिमिक्स,
6: शैलेंद्र वाला।
3: हेलो।
6: हेलो,
3: नाम बताएं सर।
6: अंकित।
3: कहाँ से बात कर रहे हैं?
6: गंगापुर सिटी।
3: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
6: पल पल, शैलेंद्र वाला।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नाम बताइए सर। कहाँ
1: चिंटू सैनी,
0: से बात कर रहे हैं सैनी जी?
1: गंगापुर सिटी,
0: गाना बताएं सर।
1: वो पल पल जीना मोहन।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो
2: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
1: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
2: मोरा रूप रंग मोरा अंग अंग
1: सुना दे सर, आपकी ख्वाहिश का ये गाना।

0: हेलो
1: सर, नाम बताएं।
0: अंकित पाकड़।
1: अंकित पाकड़ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: जूट से।
1: सुना रहे हैं सर।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: दिल तेरे के यार, कहाँ से बात कर रहे हैं? गंगापुर सिटी। बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो DS से? दिल तेरे के यार, साहिबा फिर मन क्या।

0: देवेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दुरंधर का कोई सा गाना सुना दे।
0: सुना दें सर, आपकी फरमाइश।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नाम बताए सर।
1: अरुण कुमार जाटव
0: जाटव जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी,
0: बताए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: अमन राज केली।
0: अमन राजगीर का सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश पे।

0: हेलो,
1: नमस्कार सर जी।
0: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी।
0: केशव शर्मा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: मुझे सड़क फिल्म का गाना देखे जवाने के रंग हजार नहीं कुछ सिवा प्यार के।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से। गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो।
0: नाम बताएं सर, कहाँ
1: मोहम्मद शकील,
0: से बात कर रहे हैं?
1: उत्तर प्रदेश फरुखाबाद से। सर
0: गाना बताएं शकील जी।
1: गाना सुना दीजिए, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।
1: हेलो सर,
0: जी
1: सर मेहरबानी करके थोड़ी आवाज़ और बढ़ा दीजिए, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है सर।
0: ठीक है सर, बढ़वा रहे हैं आवाज़।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:22 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका पहले तो। गंगाधर
1: गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़।
0: जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज रेडियो डीएस से।
1: सर गाने के बोले दिल साजन साजन झूला झूला मैं वादा कैसा है बोलूं,
0: बिल्कुल
1: दामिनी फिल्म का सर कुमार
0: बिल्कुल बिल्कुल समझ गया सर,
1: सानू और साधना सरगम ने गाया।
0: बिल्कुल बहुत ही प्यारा गाना है, सुना रहा हूँ सर आपको, आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल के धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89।
2: हेलो
3: हेलो,
2: नाम बताएं। नमस्ते, नाम बताएं आपका।
3: विवेक।
2: विवेक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: गंगापुर से, रेलवे स्टेशन।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: कब्जे।
2: सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: ममता गुजर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: भोर भाई दिन चल गया मेरी अम्मी।
0: बिल्कुल सुनो।

0: हेलो
1: उसको लगवाओ दिल का रिश्ता बड़ा।
2: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
2: हाँ भैया, योगेश जांग मैं तेरा छत्तीसगढ़ से।
0: योगेश जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से आज आप।
2: दिल का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है ये वाला सुनवा देंगे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पर ये सॉन्ग रेडियो डीएस में। खुल के धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: सर। नमस्कार, नाम बताएं आपका। अच्छा
1: जी। मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबरपुर है, जिला विदिशा नगरी से बोल रहा हूँ मैं।
0: क्या बात है हारून जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से।
1: हाँ, फिल्म का नाम है गुंडा राज।
0: गुंडा राज सॉन्ग, फिल्म का नाम गुंडा राज है। गाने के बोलो और बता दें सर।
1: गाने के बोल तो हमें नहीं आ रहे हैं, आप तो इसमें से कोई सा भी चला देना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का बेहतरीन सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: मेरा नाम वंदना है।
0: वंदना जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी।
0: वंदना जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डी से आप?
1: मैं बैरन गाना सुनना चाहती हूँ।
0: बैरन सॉन्ग?
1: हाँ
0: बिल्कुल सुना रहे हैं वंदना जी, आपकी फरमाइश पे सॉन्ग रेडियो डी से कुल के धन्यवाद।

0: दोस्तों दोपहर का एक बज चुका है। थोड़ी देर में अब हाजिर रहेंगे आपके साथ नए तराने कार्यक्रम लेकर। नए तराने में कुछ खट्टी मीठी जानकारियाँ और साथ में नए गाने।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।

0: अगर हमारी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी।
1: अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा।
2: There's a song which is a very new song, I'm singing for the first time, and one of my favorite artists. Check it out.

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

Sarigama Karma, the perfect gift for your loved ones.

दोस्तों, अभी आपने सुना है ना ये धरानी कार्यक्रम। दोस्तों, इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों, अभी सुनेंगे आप भूले बिसरी यादें कार्यक्रम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

मेरी साथ ट्यून इन कर रही हैं रेडियो डीएसईटी 9.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।

रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में ना डालें। रेडियो DS एवं DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: दोस्तों वक्त चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।
1: देखिए 20 दिन से हम आपकी मदद ही कर रहे हैं, हम आपको जानते भी नहीं है और ना ही आप हमें अपने बारे में कुछ बता रही हैं। यहाँ से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते अपने घर, ये रखिए, ये आपकी हिफाजत करेगा।
2: मैं आपके घर तक आपके साथ चलूं, उसके आगे मैं खुद चली जाऊंगी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ फलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो DS पर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:06 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: subscribe now and
1: सुनते रहिए दिल से 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ ढूंढ कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।
4: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
5: ठंडेराम गुजर बोल रहा हूँ, नाम बदरका से।
4: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
5: सावन आया बादल छाए बुलबुल चहचहाए फूल खिले।

0: दीदी शादर नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति गोवर्धन रोड मथुरा से अरणी दीदी को करता हूँ सादर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: राजस्थानी लोकगीत।
1: हाँ जी बताइए।
0: आयो रे आयो रे आयो सावन घर आजा पिया।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या आपका?
0: फैज खान,
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर सिटी,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अनुप जैन का हौसना।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: नारायण गुप्ता
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगा पक्षी
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: फिल्म दादा, हम तो दिल के टुकड़े करके चल दिए।

0: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मैम मेरा नाम है सलमानी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: गंगापुर सिटी से मैम।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: आज गाना सुनना चाहते हैं मोहब्बत अब तिजारत बन गई है।
1: कौन सा?
0: मोहब्बत अब तिजारत बन गई है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आरबी गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुने।
0: कौन सा?
1: दिल मेरी ना सुने, मैं दिल की ना सुने।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: सर नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तो बाबू खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: वो जब याद आए बहुत याद आए।
0: और तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। हेलो

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो कीर्ति जी? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सा?
1: झलक दिखला जा।
0: झलक दिखला जा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो,
4: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मेरा नाम आदिश राजपूत है।
4: कहाँ से बात कर रहे?
3: गंगापुर।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? फरमाइश करिएगा ना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:05 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका वर्मा जी की। मोनिका वर्मा जी ने हमें कॉल किया है रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्म आके गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: over.
1: Please.

Shh.

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम को यहीं समाप्त करके आपको लेकर चलते हैं भजन संध्या कार्यक्रम में। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: पे रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने क्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूँ तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

कहे मिरगलो सुन ए मिरगली, तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पाव पर खड़ी मिर्गली हरिसु हेत लगाए, और हरी रोज सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विसखाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

चंदन उग्यो हरिये बाग में, खुशी भई वनराय। और बांस उग्यो डर डूंग रहे थरक रही वनराय। जहां एक तरफ चंदन के उगने से वन में चारों ओर खुशी और आनंद का माहौल हो गया कि अपनी शीतल छाया के साथ साथ दिव्य सुगंध से पूरे वन को महकाएगा। वही दूसरी ओर बांस के उगने से वन में चारों ओर उदासी छा गई कि एक दिन ये नुगरा बांस खुद जलेगा और पूरे वन को जला देगा। और धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, जिसका डर था वही हुआ, उसी बांस के कारण जंगल में आग लग गई।

लो लागी डावे डूंगरे मिल गई झाड़ो झाड़, और तो पंखेरु सब उड़ गया और हंस लो बैठो डाल। जंगल में चारों तरफ आग बड़ी भयंकर फैल गई, सारे जीव जंतु पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाकर भाग गए।

0: patria o muerte.
1: Chore chale underground. We

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बडिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून नहीं है।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS।

दोस्तों रात्रि के 11 बजने वाले हैं। आज की सभा का हम यहीं समापन करते हैं। प्रातः सुबह 5:55 पे फिर मिलते हैं आपके ऋषि भाई को। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। शुभ रात्रि।